0: सगुल का कंजे के थांग के ताग शरीक का सरा का खुशु योसु जगु इसे अके अमो फिसागलो सागा इरोगे लम यहुबा लम दमनी लम यहुबा लम दमनी वात पाद बिले कुमनी याउ रसे ये लू रसे एकुई पुन्ना हो लाउना
1: ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯥꯃꯨꯛ ꯆꯠꯊꯔꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯕꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝ ꯎꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯕꯤꯒꯗꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇꯍꯪ ꯂꯣꯏꯔꯁꯤ
2: ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝꯁꯤꯡ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ
3: ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯁꯨꯃꯌꯥ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯍꯔꯕꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯍꯟꯕꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯅ 10 ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯕꯤ
4: ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤꯁꯃꯥ ꯂꯩꯐꯝꯅ ꯀ꯭ꯌꯥꯡꯒꯣꯏ ꯀꯨꯟꯌꯥꯏ ꯊꯕꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯕꯤ
5: ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯑꯜꯐꯤꯌꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯅ 10 ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯕꯤ ꯂꯩꯐꯝꯅ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯍꯔꯕꯤ ꯃꯈꯥꯂꯩꯀꯥꯏ
6: ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯇꯥꯕꯤꯌꯥ ꯂꯩꯐꯝꯅ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯕꯖꯥꯔ ꯑꯗꯨ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯅ 10 ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯕꯤ
2: ꯄꯨꯟꯅꯁꯨ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯦ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯔꯐꯣꯃꯦꯟꯁ ꯎꯠꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯣ
7: ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯐꯠꯅꯤ

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: 나시야 인시야 어떡하나 속는만 그래다 농시나 말올라마 깃나 그럼 시 잉하기 농시나 마호사득이 가라 깃마 해네 이씨 어 아만바 농농식 마락시다 모이바 낭 못가람 레리바 라마항도 항다 농농식 보낭리더라 나트라가 कनागुम बगी दा संजे फमलाउ दो नलाई दी तरह खलु बता ना नाई लाई बक थी बी दी वा द बंगम से दी नहीं पुंगो नांग ना नुंगाई रगा ना नाई नु बी ना हे ना नुंगाई जरी बे नंगलाई मिना जगे हाय बगी दा मंग ना तुम इंजर रखे बने अदो का यादी कोई करे ना फम दो वो इना जब फंगलक तब आई को काउगी रब रो आई बुक आउट बिरा बरो मुई बा नंग बुला ओ बा नंग बुला ओ बा ना नाई वो देगी नाक सिला पुंछी की नमित ताशे लग लब मत मसी भाव बा कहीं के लोट तो न ले बिरी बनो ना नाई नो बिना करी ना लग जरो बतेगी आई की मिलोगी पिरांग खाबुंगम धनंग असीजु मुई बाबा बुनिंग सिंह तो न ले ली बना ना इन्हों पी के पची नहीं ना कि न उसी सकता मु तो ले बीगी इमित अच्छी न उजा बंगाम से दर बस आई की था मुई नुंग दी मैं ये लान उड़ी है मुई बाबा पहले पहले मुई बाबा नशी की दी पोथा बिरारो ना नहीं नहीं ना नंगी थवाई मिले ना अमुक तक कोचिंग जगे इधर मो नंगी थवाई मगा मग मी का थाना तरुण ना नहीं नहीं ना कोचिंग जगे कु कु कु कु ला ला ला ला ला ला
1: हाय मम्मा ना वो खेत लाऊं मरक सीधा ना संदक के दौरे की ना नंगो नो नो सिर खेत लाऊं से यंग कीजे बताइन है
0: आ कीजे बदुना बुनंगी तो मग याम नवारी बनी लम्हांग तो हांग दा नो नो सिर पुन नंगली दरा करंब मफ़म दा कनागी दा लाई दिगा बा ना त्रगा लम्हांग दा यारी एक तो ना लाई दरा मस्सी खालो बदा लाई बक थी भी ना
1: ना मिटी आइन ले रहे हो मेरे बाग से तो चुबकुम नाम मामा एक होएगी शुरू शुरू याँ कन्नू चुई इतना सीधे हाँ मैं उनका से चिंगुम चंगा ने रहता न होएगी तो तो खन बता
0: कहीं न हरी सिबो आलांग पी दसो नों कन्नू चुबर
1: नहीं याँ कन्नू चुबर जाने ब्रज बुतारम को रख ले अब तो नहीं नहीं न मान जाने होएगी तो खन्नू पोथात बंगम
0: कयादि कोई खे नंग आई फमिन नदुना अवा नुंगाई वारी छाना रखता मा पुरोय बगी मा फम दा के जब वोई न जब फंजा रखता बा मोई बा मोई बा हंदक दि नंग सखी बसु या या रो हाय सि तो छि न बि ता छलक लब फा फसि द न नाय नु पिगी नाक तले नि दि फसि बु करी कि नु मोई बा आई की करी ईरान की दम ननाय बुला थोक पीरी बनो ननाय नुबी दी इपुरोई बगी नाक तलाई जनिंग बना लांग तक नहीं नंग न चक्की बन

0: ईशान वाह मत हंगे
1: इबुम करी वो भी रबनो
0: इताऊ पुंछी बकी यूं मुशी कदा यो रा इताऊ न हर मम्मा पंडु मुशी वो बनी
1: ए सीधने सीधने इबुम संभी रो मौई बा
2: ओ लाए लाए
1: चिंगी इबुम अमला ए अमुक तो थोक भी रो
2: ये इताऊ इताऊ
0: बोला इताऊ बोना चाहे
2: बोना से इताऊ
0: ऐ ती नंग की यों वाहन थी बनी ने मतंग मतंग मी न तक पी रख पड़ेगी इताऊ की यों ची योर बनी
2: ने इताऊ इताऊ दिन ऐसी ना हान बन लाख पुवे भी इताऊ रिम ने मतंग ले जी खंगा निको इताऊ नंग ऐ न कोई खुन्दल ले रहम पड़ेगी मतंग मतंग सुम चक की बुदना अ कोई ने म कोई न उनके इधर बने अधुना ने
0: होई नहीं इताऊ होई कोई रे उन्नताब
2: चल में कोई रे
0: उन्नताब जुदा इताऊ की तो सके सके खन मशी कोई रबन
2: होए होए
0: नशन पीना माँ का पुण्य सच्ची हाई बनी अतुल माँ दी मसांगम तदुना लाख पंगम त्रे
2: हे ओ है माँ है ना कोई ताऊ है लाख ही बचे आई उन्होंने लू न तेरे घर में मरुक नहीं ना आई इताऊ नहीं ना मामांग चाहिए तो इताऊ इतने इधर था कोई न शोरम बनी
1: มาบุกมาปองสงนงพะกระวะไอ้ที่ข้างรถเดตนะปอตัวปอตรงกระทาบิโรสิมอราสิดาพัมบิโยพัมบิโยพัมบิโยตอพัมบิโยอ่าโอ้ยอิชันอิชลำช้างลากไปอิชิงยาวนครไว้อ่าอิชิงกระทักกินไว้ๆไอ้อิชิงลงทุกจะรู้คิกิบุงอะสิโตสิงาสิดีอิตอมอิตาอะทาซึนลากไปสิดี
0: 我都弄歪了的一刀。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！

0: 하이하이 이몽사 나 코이보 가다이 가다이 사카르 버기네 아 사나안비 오 아루비 나 코이보 따리 베라니
1: 이마 나 먹을래지니 가리닥 비게다보노 이마
0: 아 나 코이카 나암 떨레이보 우다보도다 이마나 숨나 항바니다
1: 이제면 사나안비 부디 마게 가다 레이름거니 이마
0: 아 파레파레 레제사노 레제사노 이베마 아루비 아 낭부 나만비 베만기 루홍부 사카니 하이바다이네
1: होय मा चल लुसिराय नबुदि खलिए
0: खान बनती सटकदा बनी लेकोक लेकाय हायबसिदि मखोइन थोपदा एखोइन चटपा एखोइन थोपदा मखोइन लाकपा हौना सानिने
1: होय मा
0: इमोगिंग अफ द सनागी मरी एमत सिदबदो इनेम नुंगाइते इमागी सनागी मरी से नंग सिरो इबेमा
1: यानी देमा
0: सिसिसि इमागी लेसि नंग सिजरोसि नंगि नंग शब्दो इरोम लोमबदो इमायिंग बनुंगाइते हाबा
1: इमागिदो इमादम सिबियुदा अगिदि अरुपमरी मचासिन अदमयानि अरुपोयरेबसु असेंबया मालिसिदि
0: ए अरुपतु सिरुरनु सिरुरनु इमागि असेंबसे नंगि होइजरो सेसेसे आ इमासिजन दिसेसेसे कोनथोसे
1: इमानि येमा
0: इमोददि या हमनो बक्सेरिने सिदि आ इमाने इमोगद पिरबनि
1: लिकमाइसि ओइजरो हाइदना सिजन बिदना गासु तौसा सारि नुसिखिरेदे कोनथो इमा आइने थबिंग खांगसलम दाइदा इमादागि लौरगा दम सिजगेदा थंबदि इमादा दम थंबियो
0: आ इमादि हलोयरे सिद्रसु यारेदा थबग हायरा तोइन जते अदुदन नतेदा इमागि उपुदे यावरिबा फिसिंदुदगि नंगन पामदो अदुम सेनो
1: होइमा
0: इमादि कैसु हेना सिजनररोय आ सलो सलो नथौ तौ जरो सलो होरे लुहुंग बसा पथेंखिनि हे
1: होइमा आइसु थबिंग खांगखिदां लुइसिन जरो खिगे
2: लबियाई सिदामु मोरा से थमजा लमिन मालेनि मफम जाय खंगदि चादि खंगे मछिदि मछि तो खाइ बहे
0: हेमा इमोय बेमा काइदौरगे
2: काइनो इमाने तो बिदि सिबो इमाने इनाउदा इमागि लिक्का दो पिथु अदना नमौ अनिगि मरकता मिसम मिखाइ नाय बनत्रो
0: ए अदुगिरो नंगना फिफी कामि दो आइगि फमददि नखोइ इमौ गाक्तनि सा माने खेने बकरि सुथमदे सनानबि नुसी जानन लेमिनरीबे इमुंगसे महिलांग नबसिनगनो यंगोय सफू कायरग क्वांग नहरावबनी लेखाय मिनुक चंगकनी ननाउसे नसी मामाना बिगिल होंग बसकदौरी मान सिरिबंगा की मरीसे अरुपनी अदुना आइना आइगी लिक मरीसे सिनरु हाइदना पीबनी मसे अदुम हौनेने इमौसा
2: नहा निंगोन साकौबनु मितसु इमागी उपुदो सभाग फाकना हांगदोक्तुना इनाउदा अपा मापा म खललिदना इनाउना अपा मापा म खंदना सेखिबदो आइ खंगलम लोयना खनबरो आइगी दमकतादि इमाना करी हन्ने येंगबिखिगे नमौवनि लैमिनाबदा मिसचंग मिखाइ नायबगी थबकतो तौबिनु अदुगे इनाउना इहेन हेलिकानासु हाइजाबसारिये
0: सनानबि लान खनगनु नंगिदि सेतपे इनबंगामलरोयदबा मतम मतमगी ओइबा फिरोना उपु थन्न थन्न लै ननाउगिदि कैसु लैजेदि
2: खरा खिसु हेमनबा अदुगी वानि इनाउना मिथानाबा आइगी निबु हायलादि थवा साबिदबा आसिबु मने ममगी मसलो
0: सनानबि नंगदि नबु यामन फतबोइरे
2: फतबनि फतबनि
0: ननाउनु पिसे मापा मामा पुपांग सुना लैरकतबगी वा ननंगना हौजरकपनि अदुना नंगी गुमना अवनपोन मरांगकाइन उलक्ति अदुना इने नमाबु खरे यिंसिनबिबनिने नंग मागा मिसंग मिखाइ नायबगी नते
2: आइखोइदि दिने लुपा मा फाबो हेपिनिंग देसे इनाउन थबक अमतंग स तौरी हायरादि छेंगाव पुथोकतना पीगदबगी गाइदुनि
0: मदो फिबम फिबमगी मखा पोननिनि हे आंगाउबी नंगि नुपादि इमाना सरकारगी थबा मा तहले ननाउ नुपादि सरकारगी थबक सु तौद्रे आ मपांदा प्राइवेट फार्म मादा थबक मसांग खक तौजबनि सिनादि पोयेंग थौयेंग पुबो कोनादि अदुने इमाना मतें खरदंग पिबनिने मसीदी अहल लमोयबगी तौफम थोपनिने योंगलै मेलै नायबगी थबक नतिने बेम
2: नखोय गने लैमिना बक गमजरारो नखोय नसानु पापुरगने क्वार्टर द लैजरुरनि नखोय ननि नमौने नुगाइन लैबि हौरो
0: हाय सिंगनबी नंग हायबद सुमी खानगनु ने
2: इमासु इमाना गांगबद सुमी खालिदुनि
0: आइन खांगे न खांगबने नंग नंग लाकबदगी इमुंग से मथक मखा ओलबने
2: आइन करी इमुंग असि मथक मखा ओलिबा नखोय न येतबदने आइखोय सु नुगाइब गमद्रबनि
0: इपाई पुना हायबद चुंखेदा मौ थिरम दायदा हल्लमन येंगोयना हायबदो इबेमा नंगसे ताकपद खंगलरोयदाबा लौ उ हायरगा सेंजलकपा सेंजलो हायरगा लौ रपा
2: इमासु लोकटाक मयाइदा थुंखुया मथादाबदा या उयारा रोयदाबगुम वखन तारोयदोबिनी
0: 나와 너 뿌리버 뽑비 나네 마이부 아독 용노 우시다바 하 페이 이사노 빨라 키사노 아따비 아마 강나바 따래

शुक्रिया रंजन। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित आकाशवाणी इम्फाल के संगाई चैनल में, जो अभी आपके लिए प्रस्तुति करेगा एक कार्यक्रम जो है संगीत में, और पूरी मनोरंजक कार्यक्रम है आप ही के लिए, अपने श्रोताओं के लिए, गीतमाला की तरफ से आपकी फरमाइश में। मैं आपकी दोस्त वैलेंटीना।

दोस्तों, आप बेताब भी होंगे, बेचैन भी होंगे, उत्सुक भी होंगे, क्योंकि आपके दिल की मुरादें पूरी होने जा रही है हमारे कार्यक्रम आपकी फरमाइश के जरिए। और ये जो पहला मुराद आया है, एक मैसेज के थ्रू आया है, और काफ़ी चहेता ये गीत है, ओ जाना। और फिल्म का नाम बताते ही आपको पता चल जाएगा, ये है फिल्म जब प्यार किसी से होता है ऐसे। और इसे पसंद करने वाले हमारे नए दोस्त के नाम है उरीपोक तौरांगबम लैकाई से जयालक्ष्मी। इनके पसंद का ये गीत है

अभी आपने सुना था कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी की रचना और जतिन ललित के गीत और संगीत पर ये गीत था। और अगला गीत है धमाकेदार गीत है, सुनिए जरा। 100 डेज फिल्म से ये गीत है एसपी बालसुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की, गायन में दिलीप तहीर के, लेखन और राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में। और हमारे दोस्त हैं इस गीत पर अपना नाम लिखकर भेजा है गायकों खुलेन मनिंग लैकाई से के एच तातों।

और वक्त थम ही नहीं रहा दोस्तों, ये अगला गीत है कार्यक्रम में जो अगली पुकार है प्यार लिए। फिल्म मृत्युदाता से ये गीत है मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक की गायन में, समीर की लेखन पर ये गीत जिस पर अपने संगीत से सवारा आनंद मिलन ने, और इसे फरमाइश करने वाले हमारे दोस्त हैं सगोल तोमबर लाइश्रम मखा लेकाई से, सुमन लाइश्रम, सरजू सुमति और विलियमसन की पसंद का ये गीत है।

और गीतमाला के इस आलम पर ये दिल भी यूं कर रहा है, जैसे रुदाली में लता मंगेशकर की आवाज में ये दिल सुन के अपना धड़कना भूल सा गया। रुदाली फिल्म से आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की गायन में ये गीत, गुलजार की लेख और भूपेंद्र हजारिका की ये संगीत में बनी इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे दोस्त लुकेर पुरान हिनो मुखोंग से, वांगखिम नंदो, सुशीला सदानंदा, दिव्या लक्ष्मी, थियाम लेसांगखोंग से, थियाम राम, नंबोल फोइजिंग से, इबोचोबा।

और घबराता हुआ दिल, घबराता है क्योंकि किसी के जाने के गम पर ये दिल मायूस हो जाता है कुछ इस तरह। पाकीज़ा फिल्म से ये गीत है और गीत का नाम है चलते चलते यूं ही कोई। इसे पसंद करने वाले हमारे दोस्त के नाम हैं दादा बाबू रोड गिरिदिहा झारखंड से, मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मेफरा नवाज, बेबी चाहत की पसंद का ये गीत है पाकीज़ा फिल्म से। कैफी आज़मी की ये अल्फाज और धुन गुलाम मोहम्मद द्वारा।

और भाई जो वादा किया है वो तो निभाकर ही आपको जाना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा ये गीत गीतमाला की तरफ से। ये कार्यक्रम है गीतमाला की आपकी फरमाइश का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आप सुनने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की गायन में ये गीत, जिसको लिखा है सार लुधियानवी और संगीत बख्श किया है रोशन द्वारा। और पसंद करने वाले हमारे दोस्त के नाम है खुंगजुम सापम से समरेंद्र हाइक्रोजर।

अब मेरी सनम की बारी है भाई, ये नाम है हमारे फिल्म का। मेरे सनम फिल्म से ये सुनने जा रहे हैं हमारे दोस्त एनजी रणबीर पोरम्पा चुथेक से, उनके साथ हैं आरके तंभासना वांखे से और आशा भोसले और मोहम्मद रफी के गायन में ये गीत है। संगीत ओपी नैयर द्वारा और

लता मंगेशकर के गायन में ये गीत है आनंद बख्शी के लेख पर, और संगीत प्रदान किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है राजा और रंग, और इसे अपने मन से पसंद करके भेजने वाले हमारे दोस्त के नाम हैं राइजिंग सन ड्रेसेस थांगमई बंथाओ कॉम्प्लेक्स से थियाम राजेंद्र लुआंग, नोंगानवी वोनिका कंगलीचा लुआंग, चिंगमई रोंग ममांग लैकाई से आर के सुनील, आर के किरणमला, आर के वीनस, रीता अराम्बम, इबेमनुंगशी चिंगांगबम, अरीबम उपेंद्रो शर्मा।

और दोस्तों शुक्रिया भेजने के लिए, हमारे कार्यक्रम को पूरा अपना सहयोग देने के लिए, और भेजते रहिएगा ऐसे ही मनपसंद गीत अपना। इस नंबर पर नोट कीजिएगा 9863239365, फिर से 9863239365, और मेल भी कीजिएगा infalgeetmala@gmail.com पर, और अपना पुराना प्यारा पोस्टकार्ड्स भी भेजते रहिएगा। आज के लिए नमस्कार, शुभ अलविदा। नमस्कार।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तुंगन तुंगन वे मकल मथेल की थरों को यादों ना आकाशवाणी इम्फाल दिगी लेप्तना ताबीरी लेप्तना दुमक ताबियो हौजिक लांथोक सेरी तुंगन तुंगन बा सैसक पर सैसक पी सिंगी खोजेल दा मणिपुरी मतम इसे सिंग मथंग मथंग ओइना अकाउबगी फिजंग नुंगदा लोटुना थंबिख्रबा एहा किनुंग शिबबो निजरी फिगाउ सानाना फमदेगी अदुंगाइगी हौख्रबा वारी सिंगबो निंगसिंगदुना ओइरेरेंगसि पुंछिगी अरुबा लेंगफद्रबा तंगाइ फद्रबा एगी थौदां हाइबदो ngasi sungairi तानिंगली ना पसिनदि नुंसिना पाउलुंगोनबदो खल्लारोय खल्लाबसु ngamde हाइफम खंगदना वाजे नुंसी लाइमन ओइरेबसु मैचाक्षिमदि खांगबतम लगे ngaijabana पंथुंग ओइरे खल्लगे

0: ꯃꯌꯦꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯆꯤꯡ ꯑꯃ ꯌꯦꯛꯄ ꯌꯥꯏ, ꯑꯗꯒꯤ ꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯈꯔ ꯌꯦꯛꯄ ꯌꯥꯏ, ꯎꯆꯦꯛ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ, ꯍꯤ ꯄꯥꯠꯇꯨꯗ ꯍꯤ ꯌꯦꯛꯄ ꯌꯥꯏ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ po si hai hore ni lila tam ba da chu ko masi na sidagi si la ga di si si to ba si gi microphone engan ji sida sala ga di mi na bhabong ka mai tong na gi u ga da ba ari gi sin sin da action gi po da ma la ba ni ko si a khoi ju hu sik su ma tam sa na ko sin na lila to jer pu gi mai ni na khoi ju da action gi po da ma ba ko da hu ji ti ka ga phau ja re लाजिन दासन जी कमाई तो तोगो दगे कमाई तो दलो सैग दगे भाबो न करी पाम गो दगे कमाई तो गो दगे दगी अखु इसक सस न करी नो ब आइन लेपे फिरेप्स न करी नो का वाइ दनो ममांग दरा मनिंग दरा मका दरा वांग दरा भाबो नि तुम मांग यंग बद आइन मांग द कप ब पोसी आइ गि मांग फन द ले रे मी दिन रो आइ कप गि पी ता ब गि पोती उई य तुम द ले रो बे गाउन द ले रो मी सिंग दो ने दी आइ पी ता सि उ पोते ब आइ पी ता ये सि कमाई तो खंगन ग दगे आ बि एक्टिंग एक्टिंग ने चुम दरो सिग एक्टिंग एरिया जी कोनी पीबंग म कान दने भाबो नसी ला याबनी न हमीर कदो सि भाबो के दुगु म पो तु तार गने व खगी आ कोई दन नुगा जब म लेरी सि भाबो न कब द्र गदी ए कोई कब ते पी ता वंगम दे भाबो न कब गे कोई दा तो के मत नी मोशन न ओई भाबो नुई गे म नुई गे कोई दन नुगा जई भाबो याव द लीला तो म तम द ए कोई दन वजई ब अस भाबो सम ती यंग रोई द्रा गा
1: अजय अखोय मखाता ना लाक्षे निंग बसे 19 कमख्या संगीत मंडल आनंद मंदिर हरम
0: मंदिर आदा
1: 1976 ता सी फोंग पदगी थादोय थादोय सी फोंग बद ओजागी दी पुसिगी अचो माई वना मनी
0: माई वना मनी
1: तोरोनी
0: तोरोनी रिबी सारी मी
1: आदा ओजागी मचिद लाले मी ममांग द वासकतना नंगी बगी अमलाई रे
0: या ला अखोय यांग दिबेन राइटर सी
1: राइटर
0: सी सीना आइ कोक थोक यान सी यांग दुतिने सुंदा थानदी अरे स्वाइन लीला आमा मोगी कृष्ण बाय लीला है ना अंगरंग स्वाइन फुरांग लीला आमा मधु लीला मत ही ना ती दास मार तब देगी तो ही नहीं भाई आई दी हो दिए मतम दो लाइक पे दुकान अरे आई यहाँ तक ज्यादा हाँ ऐ ले जाइए ऐ लाइक पे दुकान मतक से मैं आम से काकल है कोई सही संसार ना वो ना ले बनी ना कर फम में स्वाइन अंगरंग से मु दास मा तो सखोई तौ जाए ने है खल खल था दौने सागन पोने स्क्रिप इ पोते ममदे स्क्रिप से इतबी नुगर रोदना मगोन टाइटन से खुन हाबगा तौर थोबी बारे हाबचंदा हेत इसे चगत की सिंग से खोद यानजिले गाय तानबगीको सूमगा हाबचंदना इनजी से गायर गाय इकोनगी सूमगी मैम इसे मैम से लोन लोथो हाबद इसे कुन कुंथ्रा मतने लीला इसे
1: हाउ
0: फोरेन कार द कैनो लुई ओली नि लुई को
1: ओजासी कॉमेडी नि गोजा
0: कॉमेडी नि
1: ओजासी चुपी सु सारी नि
0: साई
1: कॉमेडी सु तौरी नि
0: तौई
1: अदा सही तरा मुरे बसि हेन चल इसे
0: साई ये न आईटी 64
1: अदा कै गोंका द आईसी नु पी तुम सारा जका खन गे बयो ब्रो
0: आई का दुमक्ति खन दि खन गे दि खन गे दि आई दि तोगान बगे दि मसी आई न नापन दि न ति आई न हाय जब आई दि कैरेक्टर खन खन दे एवरी लीलाम तो मत नुन सागन सावा के चल में सहने मीने 농다 이 스킵기 아 거기 이 라탄 비보다 아 고자신이 중앙에 온다 담대요 담대디 마기디

संदोकचरी बचा आकाशवाणी फागे एफएम संगाई चैनल लगेनी लेफ्टन ताव्यू अदोंगी दमकता संदोकचरी बा संगाई चैनल की नुमाइर बताऊँ सिंह हॉकजिक संगाई चैनल की मखाता बताऊँ सिंह संदोकचरिंग है कंट्रोल रूम ऑफ ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस विंग मणिपुर की माइक आई दिगी हौजिक्त थंबीरक्पा ट्रैफिक अपडेट मियाम की चथोक चसिन की दमकता थमजरी इम्फाल ईस्ट साइड की दी गाड़ी सिंह नॉर्मल ओइना दुमक चटनरी है ना पाउदम बिरई अदुगो इम्फाल वेस्ट की ओइना दी निताईपा चुथेक की ओइना पोस्ट ऑफिस रोम दगी लाखप गाड़ी सिंह मयाय ओइरप चिन्ना ओइना चली अदुगो वेस्टर्न गेट कंगला रोम दगी लाखप गाड़ी सिंह सु मयाय ओइरप सिल्ली है ना थंबीरई वेस्टर्न गेट कंगला की ओइना निताईपा चुथेक रोम दगी लाखप गाड़ी सिंह मयाय ओइरप चिली फ्लाई ओवर रोम दगी लाखप गाड़ी सिंह सु मयाय ओइरप चिली कैसामपा जंक्शन की ओइना वहेंगबम लेकाई रोम दगी लाखप गाड़ी सिंह मयाय ओइरप चिली अतोप पंजीक खिद्रीबा मफम सिंह असीदी गाड़ी सिंह अदुमक नॉर्मल ओइना चटनरी है ना पौदंबीरई मतांग असीदा हुजुक फाउबगी ओइना थंबीरकपा ट्रैफिक अपडेट पीबा लोशिनजरे आकाशवाणी इम्फाल हौजिक ताविरिब सिंह मफम लांथोक्चरी माइवम रामचरण सिंह की मयेक्ता गुरु अरिवम ब्रोजेन शर्मा सकपा लाइसोनी से इसई की सहुना पुंसी संध्या ओइरगले ताविरसे

काविरे माइवम रामचरण सिंगी मयेक्ता ब्रोजेन मयेक्ता गुरु अरिवम ब्रोजेन शर्मन सक्पा लाइसोने से थारुन संदोक्तुन तहंजरी विषय आकाशवाणी फागी एफएम संगाई चैनल दिगनी हौजिक संगाई चैनल दा संदोक सगदबा ngasi numidang gi makhata ba thorum singamadi haiyeng gi thamjari ba thorum pareng samlap ning singjari ning singjaba si hekloi baga lanthok chagani naharol gi khonjel thorum asira thamjari isika rk makeup artist nail technician amadi beauty entrepreneur ga unaduna wari saba numidang pung taru kamini ni fu khungang gi thorum sandok chagani kangla channel de gi rile lawduna sandok chagada thorum sigi ahanbada थोकचोम बुद्ध सिंह ने सकपा खुंजोम पर्व थमजरी मखातारकपदा खुंजा सिंह वाहंग पाखुम थमजरी पाखुम पीबीगदबा एक्सपर्ट ना लाइटाम नवचंद्र थोरम पुथोपा नोंथोंबम रोमा पुंगतरेट कमिनी निफुमंगा मतंगी वाफम तहंजगनी नमिदांग पुंगतरेट कमिनी जांखई Good evening, Manipur Sandok Chagani. Ngasigi thorum da live phone-in program film isai khanbagi thorum Sandok Chagani. Pungma panga minit manga wakhalamadi isai kudul tam jagani. Pungma panga minit kunsa manga naharol gi khonjel lantok chagani. Ngasigi pungma panga minit kunsa manga da Sandok Chagadori ba naharol gi khonjel gi thorum da taba phangbigani saisakpi imaral leisang themga unaduna warisaba. उनविगदबा सालिम पुसम गीत संदोक चगनी नुमिदांग पुंग तरा हायेंग सगुल से नुमिद सेप्टेम्बर गी तांग कुनमरी अयुपुंग मंगागमिन कुन्छा तरेत यकायरोल संदोक चगनी हायेंग गी यकायरोल दा पेना सक्पिगदबा लाइसम लेबांग मचा सिंग इमा लेबांग पुखुरुम जब इसै दा मयां पुन सक्मिन वे इसै थमजरी लाइसोन इसै सक्पिगदबा सिंग दी माइबम सांत चनु पुख्रम्बम बिरला सिंग अमदी हिदंग मयुम प्रमोदिनी देवीनी आयुक पुंग तरु कमिनी तरा सिद हिदाक लांथोक चगनी पुंग तरु कमिनी तरा मंगा लेवांगनिंग इसै सिंह संदोक चगनी पुंग तरु कमिनी कुनग मंगा मतम इसै सिंह मतंग मतंग तहन चगनी हायेंग आयुक पुंग तरेट खोंजल नाचोम थमजरी हायेंग नाचोम द लांथोक चगनी असै बगी सैरोल थौरम सिद तहन चगनी राजेंद्र ओक्रम थौरम लांथोक पिगदबा तंफा मनी लुक्राम थौरम पुथोकपा हेक्रुजम देवेंद्र पुंग तरेट कमिनी निफु अतोप मंगाल थौरम से तहन जगनी रिम्स ऑफ आर्ट थौरम से एस सी आर टी की एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी यूनिट की टेंग बांगल वेनना पुथोक चब थौरम ने हायेंग आयु पुंग निपान हारोल की खोंजेल संदोक चगनी हायेंग की थौरम से तहन जगनी इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज न लाकपदा फाउना लोन अम ओइना साइन लैंग्वेज हाइब हिरम सिदा नोंथोंबम Hingis Devi, Indian Sign Language Interpreter, Faculty of DISL, Diploma in Indian Sign

0: ꯅꯍꯥꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗ ꯏꯁꯤꯀꯥꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ
1: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯕꯨꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯏꯀꯣꯛ ꯅꯨꯡꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ
0: ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯁꯤꯀꯥꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯦ ꯏꯁꯤꯀꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯃꯆꯤꯟ ꯇꯨꯡꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯅ ꯆꯪꯂꯛꯈꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯥꯝꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯦꯟ ꯏꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯊꯝꯕꯤꯌꯣ
2: ꯑꯩꯅ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯗ ꯆꯪꯂꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯀꯣꯛꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯗꯀꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯀꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯥꯔꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯌꯦꯛꯄ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯀꯂꯔꯁꯀꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯛꯑꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯂꯥꯏꯌꯦꯛꯑꯒ ꯂꯩꯔꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯒꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯒ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯦꯀꯞꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯝꯃꯛꯑꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤꯇꯣꯝꯗ ꯑꯩ ꯃꯥꯏꯁꯤꯗ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯃꯦꯀꯞ ꯇꯧꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ 2020ꯒꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯃꯅꯨꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯗꯒ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯏꯁꯥ ꯏꯇꯣꯝꯗ ꯃꯦꯀꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯤꯜꯁ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯕꯨꯡꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯁꯣꯅꯤꯀꯥ ꯀꯧꯋꯦ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯅꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯁꯥ ꯇꯣꯝꯗ ꯃꯦꯀꯞ ꯇꯧꯕꯕꯨꯗꯤ ꯃꯤꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯁꯤꯗꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯁꯦ ꯄꯣꯂꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯊꯥꯏꯅꯗꯩ ꯇꯧꯔꯦ ꯄꯣꯂꯣꯏꯒꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯂꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯅꯪꯁꯨ ꯃꯦꯀꯞꯇꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯇꯧꯁꯦ ꯈꯣꯠꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯅꯦꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯍꯩꯅꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯆꯟꯗꯣꯟ ꯊꯤꯟꯕ ꯇꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯅꯪ ꯅꯁꯥꯏ ꯍꯩꯖꯕꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯥꯛꯀ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯔꯁ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯅꯔꯚꯁꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅꯗꯤ ꯀꯦꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯅꯥꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯀꯦꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯪꯉꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯦꯕ ꯌꯥꯏꯅꯅ ꯈꯜꯂꯛꯑꯒ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯃꯤꯁꯦ ꯀꯦꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯏꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ
0: ꯍꯣꯏ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯀꯔꯝꯅ ꯆꯪꯉꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯦ ꯁꯥꯡꯂꯕ ꯖꯔꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯦꯈꯤꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯡꯂꯕ ꯖꯔꯅꯤꯁꯤꯗ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯃꯦꯟꯠꯀꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ
2: ꯀꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯣꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯋꯥꯕꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯔꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯥ ꯄꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯅꯔꯚꯁꯇꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯆꯟꯗꯣꯟ ꯊꯤꯟꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯔꯚꯁ ꯆꯠꯇꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯆꯟꯗꯣꯟ ꯊꯤꯟꯕꯁꯦ ꯍꯩꯕ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕꯀꯣ ꯃꯦꯀꯞꯄꯨꯗꯤ ꯍꯩꯖꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯨꯠꯁꯦ ꯅꯤꯛꯑꯕꯅꯦ ꯀꯩꯅꯥꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛꯁꯦ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯦꯁꯤꯅ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯅꯪ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯩꯇꯕꯗꯣ ꯎꯠꯂꯒꯗꯤ ꯃꯤꯅ ꯅꯪꯁꯦ ꯍꯩꯇꯕ ꯃꯥꯜꯂ ꯕꯤꯠ ꯍꯟꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯃꯤꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯁꯨꯛꯊꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯦꯀꯞꯁꯦ ꯐꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯔꯒꯁꯨ ꯊꯧꯒꯠꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯄꯥꯈꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯗꯣ ꯀꯣꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁꯇꯣ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯥꯈꯠꯇꯕꯗꯣ ꯎꯠꯂꯣ ꯀꯦꯝ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯀꯦꯝ ꯇꯧꯔꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯅꯥꯀꯟꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯏꯪꯒꯤꯠꯅ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯦꯝ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯀꯦꯝ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯊꯤꯜꯂꯣ ꯀꯦꯝ ꯇꯧꯔꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯨꯠꯁꯦ ꯅꯤꯛꯄꯁꯦ ꯁꯣꯔꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯐꯥꯖꯜꯂꯒꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯤꯟꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯦꯝꯗꯤ ꯇꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯐꯖꯅꯗꯤ ꯊꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯐꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯀꯥꯎꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗꯦ ꯁꯤ ꯏꯕꯥꯅꯤꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ
0: ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯜ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯦꯀꯞ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯊꯩꯗꯣꯔꯛꯂꯒ ꯏꯁꯤꯀꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗꯤ ꯈꯪꯖꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯤꯀꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯃꯥ ꯕꯕꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯋꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯝꯗꯒꯤꯅꯣ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯀꯌꯥ ꯁꯨꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯀꯞꯀꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯕ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯧꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯨ
2: ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔꯤ ꯏꯁꯤꯀꯥ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯌꯨꯝꯂꯦꯝꯕꯝ ꯕꯤꯅꯤꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯕꯕꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯔꯣꯃꯦꯁ ꯁꯤꯡ ꯕꯕꯥꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯕꯨ ꯆꯥꯎꯅꯕ ꯌꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯕꯕꯥ ꯕꯕꯥꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯃꯌꯥꯡꯂꯝꯕꯝ ꯒꯣꯒꯣ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯍꯨꯝꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯏꯄ꯭ꯋꯥ ꯑꯃ ꯏꯅꯥꯎꯄꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯩ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯃꯌꯥꯡꯂꯝꯕꯝ ꯂꯟꯈꯣꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯡꯂꯝꯕꯝ ꯅꯂꯩꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯁꯔꯤꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯋꯥꯟ ꯐꯥꯎꯕꯅ ꯕ꯭ꯂꯣꯁꯝ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯈꯣꯝꯒꯤꯗ ꯇꯝꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯜꯐ ꯐꯥꯎꯕꯅ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕꯤ ꯗꯦꯕꯤ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯌ ꯍꯥꯎꯇꯣꯏꯄꯥꯡꯒꯩꯗ ꯇꯝꯃꯛꯑꯦ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟꯅ ꯖꯤꯄꯤ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯇꯔꯁꯦ ꯇꯧꯅ ꯇꯧꯅ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ ꯂꯧꯖꯔꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯁꯇꯔꯗ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯁꯦ ꯂꯧꯕꯁꯤꯗ ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯁꯇꯔꯒꯤ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯤꯡꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯤꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯕꯤꯗ ꯆꯠꯅꯕ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ khanja nai kan sida bake su sa se la pa bake su sa ko se sida I tok tho ga ina pam line jo ina phajna pukning lup na hot na rage na master se complete oi chukan dai se tok tho kra yum da di hai dok te tauri tauri chat le na dam hai jan dai ne last budi khang e ko no mai na tar ga master se ai tau gi ge na budi khal le o se tang break lawri som da
0: hoi ngasagi master tamna somda su yana bo hona basina journey se da challenges o biga der na traga industry se de khongdara pada gi have ta re struggle mai am thing na rangani hai na thase do maruk ki oina hase bata re kari kari challenges struggle thing na re have se so ta jari ba mai am ne hena nungai na bagi da makta ki tang share tau bio
2: challenges se makhal makhal mai am thing na re do thing nai har ga su ai ki su give up tau ge na dikhan de maram di ठेंगनरेबा चैलेंजेस तो बुद्धि ऐना पामी बसने हेल लेबा को अदुना दो चैलेंजेस हायरगती को फिजिकली मेंटली अनिमक ठेंगनरे फिजिकल की हायरगना कोई की अपॉइंटमेंट लेप तना ले खलकपम मतम अदाई दी कोई माइटाई की दी लुहोंग पंथास इंग थम धान तना सुहेन ओइ दना को नाना नाना आयुक का होगत लगा मेकअप से चलक पा नोंग फादो की दी फारे नुती की चत खलक की पोथा बा फंगक तब से पोथा बा फंगक त्रगती चानिंग थानिंग मसु पोगलक ट्रे चाबा वाले तुंबा वाले पोथा बा फंगक ट्रे अदुना ना खलक बसे इसा si matang si mayam na why at the dagiti nang na ba chelak pa pung si schedule sing si nang na ba chelak pa si ay na kan ba pung si dagi hen na chang toki ba yaw ba gumba or traffic jam na teng toki ba gumba marakta gari yarakta gumba yaw ito na ko ato si gumba si nang na ba chen ba ay accident toki tau bu bok ba yaw iba ato na ato may na torok pa dagi eh si di ay ngon na su shoy rak pa yay ato na ay na ngam mi ba chang habi di example nga si si ay na client mga law ba ngam gada ba si hantaraga akong gumba mari gumba yung law ba si da ay na matam do lempa na gyan ta na misu kebi ba ai mon do sun dang na ba chen ba tap na thor su ya ba gari do adu mai na client ki tang handa na lo ba dai sim tang ni ki tang phagre adu ga ai na khwai wa ki ba se mamang che gi dengi yam na ba matang se si dai su dengi na se ya we ba dengi se na na na na kai na su ke do ba du ke se drip ya la ke se heng se kai na se ka mai ke do no ma tha sa re po tha ba se khang dai se na ba se adu ga ai na gel ko se thin na thin na chat le chat la ga ya why blood bra energy se low da ne ko chat le se adu mai na taw ra ga ya wa na ke khi adu bo lai ba kho ba gi hai do ra kem ta di tek ta kai da na kai na da na se am pam ja cream makeup to adu mai na taw we sum lak pa da gi di ai ge studio se har se handak che gi february 22 da sanga ba ne ba sigi matang sida su kitang aigi personal issue kar su thokra january last week swaida aduga koi mamu aiga yamna close ba mamu su leita ba khangau da na adugi ani je pas nar ga mentally breakdown chat khiba adu som da su dukan je sanga da ba yarak ta ba matam tharak ba ga aduga yawana kok se karom da focus ta do no khangak ta ba do adugi uchina sina budi sanga khre du matang du makra wa ke ngonda adu aina yam nungai je ba di ko a simple up se

0: மணிப்பூர் சகோல்பன் மைனோல் நேரம்
1: தவிரிப்பு பாவசி ஆகாஷ்வாணி இம்பால் திகினி सेवा संकल्प अभियान कैंपेन की गसी निनी चनब नुमित नोने जिला द जोनल एजुकेशन ऑफिस नोने न सिंधुना लाइयेक्पा अमसुंग एसे इबगी चंगदम न पांग थोकी माय विजन ऑफ विकसित मणिपुर लिसिंगनी निफुतरे हाइब हिरम द पांग थोकी ब चंगदम न अदुदा तोंगान तोंगान ब स्कूल कुनमंगा की महिरोई सनी हुमुदा रोम न सरुयाकी कैंपेन असी की सरोग मोइना जिला असी की हौचोंग द लैबा प्राइमरी हेल्थ सेंटर द हेल्थ केयर वर्कर अमसुंग आशा वर्कर सिंग की ओइबा खाना ने बगी थोरम अमसु पांग थोकी Tengkongjang Higher Secondary School, Domini English School, Amasung, San Joseph School, Noneda, Substance Abuse Kamarilena, Mahiroi Singbu Bhaptan, Bigi Thorum, Amasu Pangtoki. Campaign Asigi Sarok Amoina, Tengnopol Jila de Laiba, Netaji Subhas Chandra Bose, Awasia Bidyalaya, Hainokong Amasung Eklabia Model Residence School, Moredesu Laiyekpa Amasung Ese Ibagi Sangdam Naba Pangtoki. थाम चुप न चथगदब सेवा संकल्प अभियान की मखादा सगोबन केंद्र की मनुंग चनब मोयरांग लेता सेवा सेतु अभियान पांग थोकरे थौरम दु द मियाम द सरकार की तोंगान तोंगान ब स्कीम सिंग की कना बसिंग खंगन की सेवा संकल्प अभियान की सरुगा मोयना वांखई विधानसभा केंद्र द पाइकली ब थबक थौरम सिंग की पिबम राज्यसभा सदस्य अधिकारी मेम सरदार देवी अमसुंग एमएलए थांगजम अरुण कुमार ने येंगसिन करे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चुराचानपुर सिंधुना थौरम असी एसडीओ बीडीओ की कॉन्फ्रेंस हॉल द पांग थोकी सेवा संकल्प अभियान की सरुक अमो एना कांगपोपी जिला की मेडिकल टीम अमना कांगपोपी सब डिवीजन द लैबा अंगनवाड़ी सेंटर अमसुंग चंपाई सब डिवीजन की मखाद लैबा अंगनवाड़ी सेंटर सिंह चतुना येंगसिंग करे फेरजोल जिला दसु थौरम असी की सरुक अमो एना अंगनवाड़ी का उत्सव पांगथोकी मधुद मची ओइबा चिंजाक ई वार्डपगी लैना सिंह की मतांग मियांबु बाप तानबगी थौरम पांगथोकी तमेंगलोंग जिला जो सेवा संकल्प अभियान की सरुक अमोना डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी तमेंगलोंग ना दुईगाइलोंग खुलद लेम लाइंग बगी कैम अमा पांगथोकरे काक्सिंग जिला दसु सेवा संकल्प अभियान अंगनवाड़ी सेंटर काक्सिंग पार्ट फोर मया लेकाई द पांगथोकी जोनल एजुकेशन ऑफिस कांगसिंग नजु तोंगान तोंगान थौरम सिंह पांगथोकी लौ सिंगु विभाग की मखाद एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी अटमा थौवाल काक्सिंग ने सिंधुना थौवाल मेला ग्राउंड नोंबगी होइबा जिला थाकी किसान मेला पांगथोकरे हेल्दी सोइल हेल्दी फूड एंड सस्टेनेबल फ्यूचर हाइब हिरम पांगथोकीबा मेला अदुद पुन्न स्टॉल कुल्लोम हांगखे थौरोंगी मनुंग चेन्ना बेस्ट फार्मर्स अवार्ड की मना अमसुंग लौमी सिंग द स्प्रेयर सिंग येंथोकी तुंगदा लौमी सिंग अमसुंग साइंटिस्ट सिंग गी मरकता खना नैनबगी थौरम पांगथोकी हुमुद्रानी थोई सुबह वाइल्ड लाइफ वीक मरी लेनना कुदकी ओबे लाइयेकबा अमसुंग वारेंग इबा चांगदमनबगी थौरम अमंगसी चांदेलगी महा यूनियन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द पांगथोकरे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर चांदेल न सिंधुरम पांगथोकी बथौरम अदुदा पुन्न महिरोइ सामरम ना सरुक याकी तुंगदा महिरोइ सिंग द उचरा सिंग येंथोकी मही मसिंग तंबीबदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सिजिनबा हाइबसिगी मतांगदा नोमगीबे वर्कशॉप अमा इंफाल वेस्ट की खा नाउरेम लेकाई कांचीपुर लेबा इबोटोंबी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन द पांगथोकरे इंस्टीट्यूट असिगी सेमिनार हॉल द पांगथोकी बथोरम अदुदा त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हानगी वाइस चांसलर प्रोफेसर अमसुंग मणिपुर यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की प्रोफेसर गंगा प्रसाद परसाइन इंस्टीट्यूट असिगी प्रिंसिपल डॉक्टर आर के बिजेन सिंह सिंह सरुक याकी Watershed Cellcom Data Center DRDA Imphal East na sinduna numit umni chathagadaba implementation of PMKSY 2.0 haibasida capacity building program ama ngasidagi SIRD training holder haugdo kre thoram aduda beneficiary amasung lomi punna marphu romna saru yaki thoram aduda management of asset under PMSSY WDC 2.0 planning for NRF activists under PMKSY WC haibisigi matangda akhang ai singna wa ngangki कमिटी ऑन लम्यान हिजम इराबोट रिसोर्स एंड कॉमोमरेशन लमदिंग संगाई यूम्फम सिंधुना लम्यान हिजम इराबोट निंसिंग थौरम थौवाल जिला की संगाई यूम्फम कम्युनिटी हॉल पांगथोकरे थौरम सरुक याकीबा एमएलए और सूर्य कुमार हाय मणिपुर हौजिक लम क्या सोथरीब फगननब होनबद मियामन मखोई मखोई की मिहुत खनब ममा लैबापु नुंसीजब मतिक चाब मिहुचिंग खनब की तंगाई फदब लै मांगनाई लम्यान इराबोन पामजरब अमना नुंसी चानन लैब अपुनब मणिपुर मंगजरम मंगलान अदु ngasigi mirolna thunghanba ngamnaba hona minarsi साहित्य थौपान लूपना सही अनिनी लेरगा पीबा थियाम इबो चौबी नेशनल अवार्ड लिसिंग अनी कुंतरुक त्रिपुरा की सकनारबी कल्चरल एक्टिविस्ट आईबी अमसुंग सोशल एक्टिविस्ट खेत्रीमेम माधवी देवी द पीरगनी लूप असिन थोप चेरोल मनहाई मना असी थासी कुंथा द पांगथोक कदरिबा इंटरनेशनल ट्रांसलेशन देगी थोरमदा मणिपुर क्लास क्लब ता खुशी नगनी आकाशवाणी इम्फाल की पाव ताबिरी Rastrapati Draupadi Murmu na hairi naha singi hona jamana laibak asibo inkumja lising ani ni futare ki mamangda sokot laba laibak ama ohenba soidana ngamlagani wapham asi ngasi rastrapati na gujarat ki badodara da laiba maharas sayaji rao university ki humbudra manga suba convocation throm da phongdokki bani rastrapati na hai mahi masing hai basi tamliba ihai adubu laibak ki natraga samas ki kanaba hiram singda sijinaraba khatda tamluriba mahi adu mahi sare haina logoda bani ngasi di tongan tongan balam ke technology gi awon ba kyana kumang yangna changsil lakli malem gi oiba tongan tongan ba hiram kyada nupi sina mapung ba thokdang lorok padasu rashtrapati na laibak asigi nupi oibi singbu thagat pa phongdoki thoramadu da rashtrapati na mahiroi lising tarani soi chatrukta makhoi makhoi gi degree sing khusin nakhi IC Nagoya Asian Games da Mirabai Chanuna Lupagi Takaman Laure Nagoya Pangthokiba weightlifting ki kilogram nipuma pan ki category da Saikom Mirabai na Snatch da kilogram Marfu Taret Amasung Clean and Jerk da kilogram Sama Taramatoi Punna kilogram Sama Marfu Drani Pan Thangatuna Lupagi Takaman Pangkibani Mirabai Chanuna Asian Games da Takaman Pangbasi Andaki Asina Ahan Bani Uparashtrapati CP Radhakrishnan Pradhan Mantri Narendra Modi Kendra ki Sports Mantri Manchuk Mandabiana Saikom Mirabai na Lupagi Takaman Panglapada, Harao Pongdokre. Rajyapal Ajay Kumar Bhalla, Mukhyamantri Yumnam Khemchan, Grihamantri Gobindas Kontogjam, Hanagi Mukhyamantri Nongthomam Birensu, Mirabai Chanuna Takaman Lorapada, Nungaiba Pongdokre. Lupagi Takaman Lorakrabi, Saikom Mirabai Chanuna, Akasbani Imphalda, Achumna Hai.
2: I na hexa na bahorok patikina hojik pawbogi lambi stage da aigi medals mayamama phangkhre olympic medal leikre world champion oire adu mayam di marte da asian games ki medals ainam tang lopangam na ba ngasi pawboda dum honnaba leptana lakpudegi ngasi di aigi honna jaman adu do ngasi di phange silver medal duki mati harawe ngasi gi numbe se aina khanjara
1: Wusu Masanagi Kilogram Humpugi Sanda Eventa Naurem Rosabina Devi Final Sangre Mahaksu Soidanamaki Takaman Mapanglagani Medal Telida Barana Sanagi Ama Lupagi Manga Senjengi Tarupuna Takaman Tarani Tupanguna Tarahum Dushuma Pam the Lady Hausik Sanabagi Makata Bapau Naurem Victor Degi
3: CRPF ki yankhani pan suba battalion amasung sports authority of indiana sinduna churchanpur dangasi sisipur half marathon pangthokre half marathon asi pitch ground churchanpur dagi lamthaki amasung ground asi da mukhalakhi lamjel aduda punna miyoi lising mari romna sarukyakhi kunhumdoi suba khh laihauk devi memorial super division football tournament lising ani kuntaruki ngasi kakchingi dsa ground sanaki ba match amada ucc kakching na ywc kakching bu panjal manga sinoda thoikre Atopa match amada AIFA irengban na SFC Sugnubu panjal mari ani da thoike. Ahum suba DZ Assam Rifles Hockey Cup lising ani kuntaruki ngasi Kolam Khumalampak Hockey Stadium da sanakiba nupi gi match da Mairana DHA bu panjal ahum ani da thoike. Nupa gi oina sanakiba atopa match sing da Maira Basikhong na CEO Singjamai bu panjal mari ahum da aduga SSB na hockey union lairik yengbam laikai bu panjal manga ahum de thoiki rajesh
1: thagachari victor aroi beda marwe ba pau manipur ki folk theater amasum khongjom parbana singba mangki ba haibasi lamdamasi gi oina mangjabani haina saknaraba theater personality aribam syam sharma na hairi manipur state museum linka ki bagi yangkhai tare chuba foundation de ngasi pangthokre tha amachum na chathagada ba seba sankalp abhiyan campaign gi saruk moina ngasi tongan tongan ba thorom sing raija sinba thungba da pangthokli Rashtrapati Draupadi Murmu na hairi naha singi hona jamanna laibak asibu inkumja lising ani niputare ki mamangda sokot laba laibak ama ohenna soidana ngamlagani amasung IC Nagoya Asian Games da Mirabai Chanuna lupagi takaman laure Naurem Rosibinana wusugi final changle paulo jare

पर हमें तो बिल्कुल प्यार है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से, है ना? सही कहा ना? आपने सुना ये गीत फिल्म रंग से, जो कि 1993 में आई। अलका याग्निक, कुमार सानू की आवाज और नदीम श्रवण का संगीत और समीर का लिखा ये गीत, और इसे फिल्माया गया दिव्या भारती और कमल सदाना पर। मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। जी हां, आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम हर श्रृंगार में, और मैं हूं आपके साथ रितिका।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आपने ये गीत सुना राम लखन फिल्म से. जी हाँ, मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज, और इस गीत को संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इस गीत को लिखा आनंद पक्षी ने. जैकी श्रॉफ और डिंपल कपाड़िया पर फिल्माया ये गीत. हर श्रृंगार में आज बस इतना ही. अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार. बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह से के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर L69 परामर्शी मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील देशों पर पड़ रहा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रहा है। L69 परामर्शी मंत्री स्तरीय बैठक एक उच्च स्तरीय राजनयिक बैठक है जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार पर विशेष रूप से चर्चा की जाती है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए के से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाले सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के बड़ौदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सबकी जिम्मेदार। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्त्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Along with my co-anchor Subodh Mishra, I am Sarabjeet Kaur.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज की खबरों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ दीपशिखा सिकरवार. दीपशिखा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद सुबोध जी. गुड इवनिंग सरबजीत.
0: गुड इवनिंग मैम.
1: पहले हेडलाइंस सरबजीत से.
0: Benchmark domestic indices rise, Sensex gains 299 points, Nifty settles nearly 24,450. Global rating agencies Fitch and S&P Global raise India's GDP growth forecast to 6.9% and 7% respectively for this fiscal year. And global crude oil prices slip to near two-week low. Brent hovers around $100 per barrel.
1: प्रमुख शेयर सूचकांकों में बढ़त. सेंसेक्स 299 अंक बढ़ा. निफ्टी 24,450 के पास पहुंचा. वैश्विक रेटिंग एजेंसियों फिच और एसएनपी ग्लोबल ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का जीडीपी विकास अनुमान क्रमशः 6.9% और 7% ठहराया. और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें लगभग दो हफ्ते के न्यूनतम स्तर पर. ब्रेंट क्रूड लगभग $100 प्रति बैरल पर.
0: And listeners, before we take you through the economic news of the day, may we remind you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: चले अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं. देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज बढ़त का रुख रहा. सेंसेक्स 299 अंक यानी 0.4% बढ़कर 74,828 पर बंद हुआ. निफ्टी 118 अंक यानी आधा प्रतिशत ऊपर 23,447 पर आ गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अन्य सूचकांक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 0.7% और निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.9% की बढ़त दर्ज की गई. सकारात्मक वैश्विक संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से आज बाजार बढ़त के साथ खुले और दोपहर में थोड़े उतार चढ़ाव के साथ और ऊपर बढ़ते गए. लेकिन क्लोजिंग ऑक्शन सेशन कैश के बाद बाजारों के बंद स्तर में थोड़ी और बढ़त दिखाई दी.
0: Benchmark domestic equity indices rebounded today. The Sensex rose 299 points or 0.4% to close at 74,828. The Nifty jumped 118 points or 0.5% to settle at 23,447. In the broader market at the

0: National Stock Exchange, the mid-cap 100 index climbed 0.7%, while the small-cap 100 index gained 0.9%. Earlier, markets opened with marginal gains, tracking positive global cues and easing crude oil prices, then extended those gains into the afternoon before pairing some of the advance. However, after the closing auction session, CAS, the benchmark indices closed slightly higher than their pre-CAS levels.
1: जी और देखें कि सेंसेक्स में शामिल कंपनियों का क्या हाल रहा है 30 में से 21 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों पर नजर डालें टाटा स्टील में 3.3% बजाज फाइनेंस में 3.1% और आईटीसी के शेयरों में 1.8% की बढ़त हुई इसके उलट HCL Tech में 1.1%, Infosys और TCS में 1.1% और Titan में 0.6% की गिरावट देखी गई।
0: In the sectoral indices on the BSE, 26 out of 28 sectors edged upward. Among the top gainers, metal climbed 2.4%, commodities increased 1.6% and mid-small private banks rose 1.5%. In contrast, focused IT lost 0.9% and IT fell by 0.8%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,752 companies advanced, 1,655 declined and 190 remained unchanged. Deepshika, after these figures...
1: हाँ, इस ये चर्चा शुरू करने से पहले एक और चीज़ जोड़ दूँ मैं सरबजीत रुपए का हाल हम बता दें अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया 16 पैसे घटकर 95.75 रुपए पर बंद हुआ
0: Deepshikha, coming back to you, we just went in detail with the figures and we spoke about the various sectors. So when benchmark indices rebound after a period of weakness, what does this movement generally indicate about the market sentiment?
2: Sarabjit, if you actually see the way markets have behaved, and today should not be seen in isolation. There has been a pattern, if you see, which has been there for a while. It gets battered continuously and then there will be some, some upward movement that comes in with some buying interests, you know, which comes around. But I think investors need to make a very cautious call at this juncture in view of what the global factors are. A, there is crude, which is there on the horizon. It has inched up in view of the West Asia crisis. The other crucial factors, what happens in the US? We've seen the Fed has raised rates. There's also indication that there could be another rate increase coming in. Impact of that, which is being felt in the currency markets also. So all these factors need to be sort of taken into account when you actually are betting or buying, particularly for short term.
1: जी दीपशिखा आपने कुछ कारक तो गिना ही दिए अभी जिनका उल्लेख मैं करना चाहता था लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी हर जगह के जितने भी हम मार्केट्स पर नजर डालते हैं जिनको हम मॉनिटर करते हैं लगातार आपने अमेरिका का उल्लेख किया अभी फेड रेट्स का उल्लेख किया आपने इसके बाद हम देख रहे हैं जैसे कल नैस्डैक या पिछले दो दिनों में काफी सकारात्मक रहा और बिल्कुल काफी
2: बहुत
1: अच्छा भी रहा
2: बहुत जबरदस्त
1: रहा
2: रही है हाँ।
1: वो हमारे बाजारों पर दिखाई नहीं देता है
2: बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है एक बहुत अजीब कहना चाहिए बहुत ही एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है अर्थव्यवस्था अगर आप देखें तो काफी मजबूत स्थिति में है आज भी जिस तरह के प्रोजेक्शंस आ रहे हैं बहुत बेहतर हैं लेकिन जो चुनौतियां हैं अर्थव्यवस्था के सामने खास तौर पे अगर हम देखें क्रूड को लेके या वेस्ट एशिया क्राइसिस को देखें तो वो एक भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है तो ये ओवरहैंग जो बाजार पर बना हुआ है और ये काफी कुछ समय हो गया है इसको चलते हुए दूसरा कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आईटी क्षेत्र में जो आशंकाएं हैं वो बराबर बनी हुई है. एल नीनो का जो है आउटपुट पर कृषि के उस पर क्या असर होगा वो आशंकाएं हैं. उस पे अर्निंग्स में कंजम्पशन में हालांकि अभी मजबूत है कंजम्पशन, लेकिन कुछ एक ओवरहैंग सेंटिमेंट में ऐसा बिल्ट अप हो रहा है. तो मुझे लगता है कि जो फेस्टिव सीजन आने वाला है हो सकता है कि थोड़ा उस तक अगर वैश्विक स्थिति थोड़ी सुधरती है तो शायद बाजार भी थोड़ा मजबूती की तरफ बढ़ेगा.
0: Deepshikha, since you touched upon the projections part, let's first see what have been the projections as of now. Fitch Ratings has raised its forecast for India's GDP growth in the current fiscal year to 6.9%, up from its earlier projection of 6.4%. In its June Global Economic Outlook, the agency attributed the upward revision to strong first quarter growth and the resilience of the Indian economy. However, Fitch expects economic momentum to moderate during the second half of the fiscal year. It also anticipates that the Reserve Bank of India may raise interest rates by 25 basis points at its October monetary policy meeting, citing strong domestic demand, rising prices, and adverse supply side developments. Consumer spending growth is expected to slow to 5.7% in financial year 27 compared with 7.2% in the previous financial year. Fitch projects India's GDP growth to ease further to 6.5% in financial year 28, while inflation could rise to 5.5% by December 2026.
1: और इसके साथ ही स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भी चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि का अपना अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है. एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक गतिविधि पर अपनी रिपोर्ट में S&P ने बताया कि विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक हैं मजबूत औद्योगिक गतिविधि, स्वस्थ उपभोक्ता मांग, मजबूत वस्तु निर्यात और बढ़ता सरकारी निवेश. उसका अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 में उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसतन 5.1% रहेगी. हालांकि S&P ने चेतावनी दी है कि इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में विकास कमजोर हो सकता है क्योंकि GST को युक्तिसंगत बनाने और आयकर कटौती का लाभ धीरे धीरे कम होता जाएगा. एजेंसी ने मौसम संबंधी जोखिमों का भी उल्लेख किया है. उसके आकलन के समय कुल वर्षा सामान्य से 15% कम थी, इसलिए कृषि उत्पादन और खाद्य मुद्रास्फीति पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा. दीपशिखा, अभी आप जिसका उल्लेख कर रही थी मौसम, एल नीनो और अब इसमें जीएसटी का जिक्र आ ही गया है, आयकर कटौती का भी उल्लेख आ गया है. इसके अलावा लेकिन जो खासकर हम फिच रेटिंग्स पर तो बाद में हम चर्चा करेंगे, इसके अलावा भी अगर हम देखें तो कुछ और भी रेटिंग्स आई हैं दुनिया में. माहौल है कि भारत की
2: बिल्कुल अगर आप देखें तो आज जो है OECD ने भी अपना आउटलुक निकाला है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, और दोनों ने इंडिया की जो ग्रोथ है उसको बढ़ा दिया है. तो OECD ने उसको 7.1% कर दिया है 6.3% से, और ADB ने भी 7% कर दिया है 6.6% से. और सभी एजेंसियां ये कह रही हैं कि भारत में एक तो सर्विस क्षेत्र जो है उसके अलावा निर्यात क्षेत्र ने जिस तरह का मजबूती दिखाया है, खासतौर से हम जानते हैं कि किस तरह की चुनौतियां इस क्षेत्र के सामने आई थी, तो उसके अलावा सरकार की तरफ से खासतौर से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है जिस तरह का बढ़ाया गया और जिस क्षेत्रों पे खर्चा किया गया, तो उसका असर जो है अब निजी क्षेत्र के भी निवेश पर नजर आ रहा है, जो कि GDP के आंकड़ों में भी सामने आया था, और इन एजेंसियों ने भी यही चीज दोहराई है आज.
1: जी,
0: so Deepshikha, we'd like to take you back to the Fitch ratings, and we'd like to have your word on this. What does this upward revision tell us about the underlying strength of the Indian economy?
2: Sarabjit, we've been discussing this, and like I said earlier, Indian economy is in a very strong position. The data is clearly showing that there is strong consumption, which the data showed us. Private investment, which was one of the key challenges, is now begin to show, some movement there. So, which was the greatest news? So, despite all the challenges which these agencies have highlighted, it needs to be seen that overall the situation of the economy remains robust, despite, you know, the risks which have been flagged. There is inflation risk which has been flagged, and also the El Nino risk, which can impact farm output, which can therefore have some implications for the demand. Whether this would translate to markets, like I said, maybe you could see the festive season sort of brings in back that kind of strength which the economy is showing in the markets.
1: Devshikha, jo jiska ullekh abhi S&P ne kiya hai, jo char factors bataye hain ki mazboot audyogik gativithiyan hain hamare yahan aur upbhokta mang kafi achhi hai aur vastuon ka niryat kafi मजबूत हालत में है और इसके साथ बढ़ता सरकारी निवेश भारत में और हमारे जीडीपी में अगर हमेशा से हम देखें तो ये सरकारी निवेश वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा से अभी क्या हालत है और कहां-कहां इसमें बढ़ोतरी हुई है जिसका असर हम देख सकते हैं जो इन प्रोजेक्शंस में दिखाई दे रहा है
2: अगर आप देखें सरकारी जो निवेश है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है कोविड के समय से और चूंकि सरकार ने ये देखा कि जो जिस तरह का संकट देश के सामने था उस समय निजी क्षेत्र जो है वो निवेश नहीं कर सकता था तो सरकार ने खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल सेक्टर स्पेंडिंग अपना बढ़ाया इंफ्रास्ट्रक्चर में खास तौर से निवेश किया गया अगर आप देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हाईवे सेक्टर रेलवे सेक्टर सभी क्षेत्रों में कैपिटल एक्सपेंडिचर को काफी हद तक पुश किया गया अगर आप देखें रेलवे का उदाहरण ले रेलवे काफी हद तक अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल का जो बजट है उसको काफी हद तक वो टारगेट्स अचीव कर चुका है तो ये एक जो पुश है बराबर सरकार की तरफ से की जा रही थी और उससे ग्रोथ को काफी बल मिला है जो क्षेत्र जहां पर खास तौर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं वहां पर बहुत बल मिला डिमांड वहां क्रिएट हुई है और अब उसका असर जो है फाइनली नजर आ रहा है जिस तरह से निजी क्षेत्र का निवेश अब थोड़ा थोड़ा चालू हो गया है कुछ क्षेत्रों में तो उम्मीद की जाती है कि ये आगे मजबूती पकड़ेगा और जैसा कि हम कह रहे थे कि हो सकता है आने वाले समय में ये मजबूती जो अर्थव्यवस्था की है वो निवेशकों को बाजार की तरफ और आकर्षित करे और बाजार में मजबूती आए लेकिन हाँ बाजार का एक सेंटिमेंट जो है जैसा कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे उस पे बातचीत कर रहे थे वैश्विक स्थिति जो है बहुत अनुकूल नहीं है बहुत चुनौतियां हैं वहां पर तो अगर वैश्विक स्थिति जो है वो अनुकूल रहती तो हो सकता है भारतीय बाजार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होता
1: जी हम कह सकते हैं कि हम टिके हुए हैं और खास करके जो जीडीपी के अनुमान है ये तमाम संकटों के बावजूद
2: बिल्कुल भारतीय अर्थव्यवस्था काफी अच्छी स्थिति में टिकी हुई है आंकड़े कम से कम यही बता रहे हैं
1: जी और अगली खबर है भारत कनाडा व्यापार पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता अच्छी प्रगति कर रही है और दोनों देश दिसंबर के मध्य में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन तक बातचीत पूरी करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कार्नी ने यह भी कहा कि उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय के आसपास कनाडा की यात्रा करेंगे हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है कनाडा के प्रधानमंत्री ने यह बात कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कही प्रधानमंत्री कार्नी अगले दशक में अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों के साथ कनाडा के व्यापार को दोगुना करना चाहते हैं उन्होंने भारत को उस व्यापक प्रयास का हिस्सा बनाया है जिसका उद्देश्य अमेरिका पर कनाडा की निर्भरता को कम करना है। दीपशिखा, ये जो कनाडा और अमेरिका का पुराना रिश्ता था उसके बिल्कुल नए आयाम दिखाई दे रहे हैं अब।
2: बिल्कुल, देखिए जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स है वो अगर हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों से एक नया ही जो जियोपॉलिटिकल कहना चाहिए अलायंसेस जिस तरह के उभर रहे हैं और मतलब जो ग्लोब है उसका स्थिति बदलता जा रहा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है उनको मैनेज करना और इसीलिए सरकार जो है इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है उन पे बहुत फोकस कर रही है
1: जी। और एशियाई शेयर बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.9% बढ़ा, जापान का शेयर बाजार आज भी बंद है।
0: Well, moving on further with our stories, U.S. President Donald Trump has defended his administration's military action against Iran in an address to the 81st U.N. General Assembly in New York yesterday. He urged countries to maintain economic pressure on Tehran and said Iran faces a choice between reaching a deal and facing further U.S. military action. Mr. Trump said the United States had targeted Iran's nuclear program and weakened its military capabilities. He reiterated that Washington would not allow Iran to acquire nuclear weapons. He urged for the complete economic isolation of Iran.
3: I call on all nations to join us in enforcing the complete economic isolation of Iran until they stop their attacks on commercial shipping, relinquish their nuclear ambitions, and cease their support of terror. If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace of Iranian terror, and oil prices will come plummeting down even lower than they were at the start of the conflict, and they were very low.
0: Meanwhile, U.S. President Donald Trump has said his administration strongly supports the India-Middle East-Europe economic corridor. President Trump made the remarks while addressing a meeting with Gulf Cooperation Council and Arab leaders on the sidelines of the UN General Assembly. He said there is a need to shift Middle East energy infrastructure away from Iranian checkpoints amid multiple strikes on West Asian countries during the war.
4: Iran's terrorist attacks on commercial shipping in neighboring countries have shown the need to shift Middle East energy infrastructure away from the Iranian checkpoints. That's why my administration strongly supports the India-Middle East-Europe economic corridor and other places, a form of getting oil out, pipelines or anything else. And together we're on the verge of overcoming challenges that have plagued this region for a decade.
0: So, Deepshikha, against the backdrop of a rapidly changing geopolitical landscape, what significance does President Trump's this address to the 81st UN General Assembly hold for the international community?
2: You know, global community was expecting some kind of direction or some kind of indication from President Trump's address to UN General Assembly on which way, the conflict in Tehran will take course. And it looks clear that as of now, I think the cues are that it's not coming to an end very swiftly. While he's appealing to, the global community to come together and allow, not allow Iran to acquire nuclear weapons. But I think the cues are that it will probably continue for some time. But I think the most important takeaway for me is, I think, his endorsement of India, Middle East, Europe economic corridor. I think this is something which India has been sort of stressing on, the importance of it. And this endorsement definitely sort of reiterates what India has been pushing for.
0: Addressing the India community of Latin America and Caribbean states, CELAC, foreign ministers meeting during the UN High Level Week 2026 in New York, External Affairs Minister S. Jaishankar called for stronger economic and development partnerships between India and the CELAC. He said India-CELAC trade has now crossed $50 billion annually.
5: India-CELAC trade has now crossed over $50 billion annually. yet there is much more room to grow. Our strengths are highly complementary. India brings technology, pharmaceuticals, skilled resources, digital capabilities, and a large and growing market. While the CELAC offers opportunities in critical minerals, sustainable energy, agriculture, food resources, and other natural assets. Our own growing middle class makes us a natural partner for each other.
0: So there's a call for a stronger India-CELAC cooperation, a greater voice for the global south. Deepshikha.

0: We'd like to know from you, against the backdrop of changing global equation, how important is greater cooperation between India and the Latin American and Caribbean region?
1: See, like we discussed earlier, you know, India is trying to forge alliances with different countries and global south. Definitely, this was the theme at G20 also. That's a big focus area for India. Latin America, as we know, they have some critical minerals, and we are trying to reach an agreement with them on supply of critical minerals. So definitely a big focus area for India is forging these multiple trade alliances with multiple trade partners to secure resilience of its own supply chains.
2: जी, और नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट ढांचा अगले महीने की 15 तारीख से लागू होगा. इस ढांचे के तहत 2000 रुपए तक के यूपीआई लेन देन पर शून्य एमडीआर लगेगा. आपको ये शंका हो सकती है कि क्या यूपीआई के माध्यम से दोस्तों या परिवार को पैसे भेजने पर कोई शुल्क लगता है. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने कहा है कि पर्सन टू पर्सन लेन देन भुगतान करने वाले यानी पैसा भेजने वाले और लाभार्थी यानी पैसा प्राप्त करने वाले दोनों के लिए पूरी तरह से मुफ्त रहेगा. यूपीआई का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी राशि ट्रांसफर करने या प्राप्त करने या यहाँ तक कि खुद के खातों में भी ट्रांसफर करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. नागरिक बिना किसी लेन देन शुल्क के किसी भी स्वीकृत राशि का यूपीआई पर स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर कर सकते हैं.
0: Global crude oil prices rose today but remained near a two-week low as concerns over rising supplies continued to weigh on the market. Brent crude was trading 1% higher at $100.19 per barrel. West Texas intermediate crude was trading 0.1% up at $90.61 per barrel at the time of writing this report.
2: तेल पर छोटी सी बात बता दें दीपशिखा आप.
1: तेल तो बहुत ही अनसर्टेन हो गया है. हम देख रहे हैं वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट जब तक रिजॉल्व नहीं होता है तब तक तेल पर प्रेशर बना रहेगा. भारत के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है.
2: और भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.1% गिरकर 1,52,016 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. चांदी मामूली गिरावट के साथ 2,32,766 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी. और दीपशिखा आज वक्त इतना ही है. हालांकि चलते चलते हम जरूर कहना चाहेंगे कि ये जो सोने और चांदी का हाल था पिछले 1-2 सालों में हमने जो हाल देखा था कई लोगों के लिए बहुत अच्छा निवेश साबित हुआ था. लेकिन अब देख रहा हूँ वो शायद उतनी ज़्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है या इतने पीक पर पहुँचा हुआ है कि अब लोग बहुत ज़्यादा इस पर भाव नहीं दे रहे.
1: बिल्कुल, जो एकदम तेजी जो आई थी दोनों सोने और चांदी के दामों में वो थोड़ी सी ठहर गई है, थोड़ा ठहरा हुआ है. तो अब जो अगर निवेश भी है वो लॉन्ग टर्म और पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए उस पर आपको देखना होगा.
2: जी, दीपशिखा कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
1: धन्यवाद.
0: Listeners, before we wrap up, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise, Sensex gains 299 points, Nifty settles nearly 24,450. Global rating agencies Fitch and S&P Global raise India's GDP growth forecast to 6.9% and 7% respectively for this fiscal year. And global crude oil prices slip to near 2-week low. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

1958 में आई फिल्म मधुमति से आपने ये गीत सुना। सलील चौधरी का संगीत, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में। लिखा ये गीत शैलेंद्र ने। एक बार फिर से मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है गीत मेरे मनमीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

तो दोस्तों गीत मेरे मनमीत में बस इतना ही। अंजू आ चुकी हैं स्टूडियो में निशिगंधा लेकर, आप सबको छोड़े जाती हूँ उन्हीं के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। जी हाँ, जिसे सुन रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मुझे दीजिए इजाजत और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मकुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश की युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सबकी जिम्मेदार। अब ऐसे जवाब तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्मअनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से ही परिपूर्ण।
0: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का, हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने कहा कि बाजार नियामक सेबी लंबी अवधि वाले डेरिवेटिव उत्पादों के लिए मार्जिन आवश्यकताओं को तर्कसंगत बनाने पर विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य वायदा एवं विकल्प खंड में जोखिम प्रबंधन और वित्तीय क्षमता अनुसार तथा दीर्घकालिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, जिससे निवेशक सुरक्षित ट्रेड करें और धीरे धीरे मुनाफा कमाएं। राजस्थान के जोधपुर में कल एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें आग बुझाने के प्रयासों के दौरान विस्फोट में 13 अग्निशमन कर्मी घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि परिसर में रखे ज्वलनशील रसायन के ड्रमों में आग पकड़ने से ये तेजी से फैल गई, जिससे कई विस्फोट हुए। घटना की सूचना मिलते ही करीब 10 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मराठवाड़ा में भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में आज आंधी चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समय हुआ है 12:11 और 3 सेकेंड और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आज अंजू, आपके साथ लेकर आई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है निशिगंधा। प्यार भरे नमस्कार के साथ शुरुआत कर रही हूँ इस कार्यक्रम की और खूबसूरत गीतों की। इस दुनिया की दौड़ में सब कुछ कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, कोई पैसा, कोई शोहरत और कोई कामयाबी, पर मेरी तलाश तो उसी दिन तुम पर खत्म हो गई जब तुम मिले और अब कुछ पाने की ख्वाहिश ही नहीं बची। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है, तुम्हें पाया तो जैसे खुद को पा लिया, तुम्हें पाया तो जैसे खुद को पा लिया, तेरी धड़कन को अपने दिल में ही बसा लिया। अब जमाने से मुझे कोई तमन्ना ही नहीं, खुदा से जो मांगा था वो मैंने तुमसे पा लिया।

अच्छा सुनो, दुनिया ला खूबसूरत सही, तेरे मेरे लिए सबसे हसीन नजारा तुम्हारी ये आंखें हैं। जब तक इनमें मेरे लिए मोहब्बत है ना, मुझे जिंदा रहने के लिए भला किसी और चीज की क्या जरूरत। तेरी नजरों के साए में मिला है मुझे वो सुकून जिसे ढूंढती फिरती रही। अब हर लम्हा बस मेरी यही चाहत है कि तू ही मेरी जिंदगी में रहे और तू ही बने मेरा सुकून।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माय गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और कार्यक्रम चल रहा है निशिगंधा। मैं हूं आपके साथ अंजू।

पता नहीं क्या जादू है तुम्हारी इन आंखों में और इस सादगी में। मैं लाख संभालूं इस दिल को, पर तुम्हें देखते ही न जाने कहाँ खो जाता है। तुम्हें देख न जाने क्या हो जाता है, हर एक पल में ये दर्द कहीं खो जाता है। तुम मुस्कुराकर बस देख भर लो हमें, तो ये बिखरा हुआ समा भी खूबसूरत हो जाता है।

एक बात याद रखना, आजमाने के लिए तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे इस दुनिया में, पर मेरी तड़प कर भी, मेरी तरह तड़प कर मुस्कुराने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। इस तरह ना आजमाओ मुझे कि मैं पत्थर हो जाऊं, इस तरह ना आजमाओ कि मैं पत्थर हो जाऊं, तेरी यादों के समंदर में कहीं खो जाऊं। रख लो मुझे समेट कर अपने पास ही यहीं कहीं, ऐसा ना हो कि मैं गुजरा हुआ कल हो जाऊं।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दुनिया की कोई भी चीज़ अब उतनी खूबसूरत नहीं लगती जितना तुम्हारा चेहरा लगता है। जब भी अब आंखें बंद होती हैं सिर्फ तुम्हें ही देखती हैं। अब तो बस इस दिल की एक ही जिद है कि तुम्हें बस अपनी आंखों में बसाना चाहते हैं, दुनिया की हर नज़र से तुम्हें छुपाना चाहते हैं। कोई और अक्स ना आ सके इन नज़रों में, इसलिए खुद को तुम्हारे साथ बसाना चाहते हैं।

दोस्तों अब समय है समाचारों का, 1:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन के विश्वसनीय पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उनसे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों की ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: सुस्तरबन आत्मनिर्भर शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सबकी जिम्मेदारी। अब ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान टेक्निक और कौशल से युक्त साथी आत्मविश्वास आत्म अनुशासन सकारात्मक सोच संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के, तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पूनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी से लाए गए 12 किलो सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत बांग्लादेश सीमा पर सोने की तस्करी रोकने के लिए कई बार कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रूपए मूल्य का 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी ना ओरेम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमानिंग त्यास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारतोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा के माहेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और राइजा ढिल्लो की महिला टीम और अनंतजीत सिंह नरुका मेराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुषों की निशानेबाजी स्की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेक सिंह गिल और मेराज अहमद खान को बधाई दी है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि खिलाड़ियों ने एकाग्रता और बेहतरीन टीम वर्क प्रदर्शित किया। प्रधानमंत्री ने भविष्य के प्रयासों के लिए भी उन्हें शुभकामनाएं दी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. India has reiterated its interests and concerns with regard to sanctioning Russia and Iran Act. External Affairs Minister S. Jaishankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of the UN General Assembly session last evening and raised concerns regarding the act. Both leaders also discussed India-U.S. bilateral relations and Gulf and Ukraine situations. U.S. President Donald Trump signed into law the Sanctioning Russia and Iran Act last week, which authorizes him to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas. In response, New Delhi said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security for the nation. Jaishankar, who arrived in New York City on Sunday, is leading the Indian delegation for the 81st session of the UN General Assembly. After meeting with Jaishankar, Rubio said both countries are building strategic partnership and coordinating on key regional priorities and upcoming multilateral efforts. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar co-chaired the L69 Consultative Ministerial Interaction on UNSA Reform along with his St. Lucian counterpart Alva Baptist. Addressing the meeting, Dr. Jaishankar noted that the Global South is at the receiving end of the unprecedented changes that the world is undergoing, with the UN falling short of expectations. He also underlined the inability of the UN Security Council to address ongoing conflicts and threats to international peace and security only highlight the urgency of reform. New Delhi has categorically rejected the unwarranted and factually incorrect references to India in the joint communique of the so-called Organization of Islamic Cooperation Contact Group on Jammu and Kashmir. In a statement, Ministry of External Affairs said, "The OIC has no locus standi to pronounce on matters that are strictly internal to India." It said the entire Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are integral and inalienable part of India, and no amount of repetition of politically motivated propaganda can change this reality. India has condemned the attack on the commercial vessel MV Cape Dow of the east coast of Oman. Ministry of External Affairs said of the 20 Indian seafarers on board, 19 have been rescued, while one Indian national tragically lost his life. It offered deepest condolences to the family of the deceased. It said the Indian embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities for early repatriation of the Indian seafarers. The Election Commission has said that all the decisions, including the electoral roll revision, were taken unanimously. The Commission informed that it has taken numerous decisions, introduced around 40 new initiatives, and undertaken many electoral reforms, including special intensive revision in the recent months across the country. The Commission emphasized that difference in views and observations are a normal part of deliberation in any institution, and it is a part of the decision-making process before taking a final decision. It said every officer of the Commission is fully authorized to give his suggestions to the Commission for improving the electoral system. BJP President Nitin Naveen has appointed the party's in-charges and co-in-charges for all 36 states and union territories. Former Union Minister Smriti Irani has been appointed BJP in-charge for Chhattisgarh and Haryana, while Harish Dwivedi will oversee Bihar. Vinay Sahasrabuddhe has been given the charge of Delhi, while Vinod Tavre has been appointed Uttar Pradesh in-charge. The Ministry of Finance has informed that all public sector banks and regional rural banks will remain open on Sunday, 27 September. The ministry said that this step has been taken in view of the proposed three-day nationwide bank strike called by the United Forum of Bank Unions from 28th to 30th of this month, coinciding with the preceding weekend holidays of 26th and 27th September. It said that the Reserve Bank of India has granted approval for all bank branches, offices, ATM link branches and currency chests to remain fully operational on Sunday. Indian men's badminton team settled for the bronze medal after facing 1-3 defeat to China in the semi-final in Aichi, Japan. With this, India's medal tally has risen to 12 medals, 1 gold, 5 silver and 6 bronze. Union Home Minister Amit Shah congratulated the Indian men's badminton team for their performance at the Asian Games. And that is the end of this news bulletin.

रात के सुहाने सफर में शुरुआत हो चुकी है अपने आपके अपने खूबसूरत कार्यक्रम जिसका नाम है गीत सुहाने। एक बार फिर से मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी का। समय हुआ है 1:11:23। इस घंटे आप सुनेंगे बहुत ही मधुर गीत। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। चंद अल्फाज शायरी लिए हुए, जब थाम लिया तुम्हारा हाथ तो इस जमाने से क्या डरना, जब थाम लिया तुम्हारा हाथ तो इस जमाने से क्या डरना, और क्या ही खौफ हो किसी का जब ये मोहब्बत बहुत शिद्दत से की हो।

अजीब बात है ना कि ये चांद आज ना जाने क्यों हवा में कहीं खोया सा है। तेरा चेहरा इसे दिखाई नहीं दिया तो इसका नूर भी आज फीका सा है।

पता है, कभी कभी लगता है कि हम अपनी जिंदगी खुद लिख रहे हैं, पर मोहब्बत के रास्ते पर पैर रखते ही समझ आता है कि कलम तो भाई किसी और के हाथ में है, हम बस चलते जाते हैं ये जाने बिना कि मंजिल कहाँ है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मोहब्बत की कहानी भी बड़ी अजीब है, न जाने कहाँ रुकती है। मोहब्बत की कहानी भी बड़ी अजीब है, न जाने कहाँ रुकती है, कभी पल भर में मुकम्मल तो कभी ये उम्र भर की कसक छोड़ जाती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों, समय हुआ है 1:28 कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने और मैं हूँ आपके साथ अंजू। तेरा मेरी जिंदगी में आना जैसे किसी दुआ का कबूल होना है। अब इस दिल का हर लम्हा बस तेरे ही इर्द गिर्द घूमता है।

दूरी तो सिर्फ फासलों की होती है, दिल के रिश्तों में तो जब भी किसी को महसूस करो तो वो धड़कनों में हाजिर होता है। आसपास ही महसूस करती हूँ तुम्हें हर लम्हे में, आसपास ही महसूस करती हूँ तुम्हें हर लम्हे में, जब भी सोचती हूँ तुम्हें तो तुम मिल ही जाते हो मुझे मेरे ही दिल में।

आपको रोकने की जिद नहीं करेंगे, क्योंकि जो दिल से रुकना ना चाहे उसे जबरदस्ती रोका नहीं जाता। बस कुछ पल और बैठिए, फिर शौक से चले जाइएगा। चले जाइएगा शौक से, पर अभी जरा ठहरिए तो सही। इस दिल को आपकी मौजूदगी से थोड़ा बहलने तो दीजिए सही।

जो सिर्फ लफ्ज में बयां हो जाए वो मोहब्बत कैसी और जिसे मापा जा सके वो शिद्दत कैसी। हमारा इश्क तो पैमाने से बहुत ऊपर है। मोहब्बत को मापना हमें नहीं आता, बस निभाना आता है। तुम्हें पाकर खो जाना और खोकर तुम्हें ही पाना आता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर कर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मा कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: शांतिपूर्वक और जिम्मेदार बनाना हम सबकी जिम्मेदारी। हमें ऐसे जवाब तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का, विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के, तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पूनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का, अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांधा एक्सप्रेस आज कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए यह कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित की जा चुकी है। इनकी बिक्री 35 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में संशोधित उड़ान योजना लागू करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राज्य सरकार की ओर से आंध्र प्रदेश हवाई अड्डा विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने इस पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। आंध्र प्रदेश उन 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है जिन्होंने इस योजना के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। संशोधित उड़ान योजना का उद्देश्य किफायती हवाई संपर्क का विस्तार करना और कम सेवा वाले और सेवा रहित क्षेत्रों में विमानन बुनियादी ढांचा मजबूत करना है। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी ना ओरेम विशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमा निंगत्यास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारतोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा के माहेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और राइजा डिल्लो की महिला टीम और अनंतजीत सिंह नरुका, मेराज अहमद की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Ashish P. Abraham. India has reiterated its interests and concerns with regard to sanctioning Russia and Iran Act. External Affairs Minister S. Jaishankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of the UN General Assembly session last evening and raised concerns regarding the act. Both leaders also discussed India-U.S. bilateral relations and Gulf and Ukraine situations. U.S. President Donald Trump signed into law the Sanctioning Russia and Iran Act last week, which authorizes him to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas. In response, New Delhi said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security for the nation. Jaishankar, who arrived in New York City on Sunday, is leading the Indian delegation for the 81st session of the UN General Assembly. After meeting with Jaishankar, Rubio said both countries are building strategic partnership and coordinating on key regional priorities and upcoming multilateral efforts.

दोस्तों समय हुआ है 2:11 और 5 सेकेंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। एक बार फिर से मैं अंजू करती हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता।

कुछ रिश्ते जमीन पर बनते हैं और कुछ कहते हैं कि आसमान है, पर हमारा रिश्ता तो सीधा दिल से दिल के बीच बना है। इसलिए इस दुनिया को क्यों बताऊं कि क्या रिश्ता है तेरा मेरा, ये तो लफ्जों में बयां भी नहीं होता। लेकिन तू पास ना हो तो इस दिल का कोई ठिकाना भी नहीं होता।

कहते हैं जो आपका होता है वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर आपके पास आ ही जाता है, और आज तुम्हें अपने सामने देखकर बस यही ख्याल आ रहा है कि यूं मिल जाओगे तुम मुझे, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। यूं मिल जाओगे तुम मुझे, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। तेरी एक मुस्कुराहट मेरी पूरी दुनिया ही बदल देगी, ये तो मुझे एहसास ही नहीं था।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

जुबान खामोश है तो क्या हुआ, आंखें तो सब सच बोल ही देती है ना। जब दिल में कोई बस जाता है तो ये नजरें अपने आप गवाही देने लगती हैं। तभी तो किसी ने कहा है कि चुपके से नजरों का मिलना और मुस्कुरा देना, चुपके से नजरों का मिलना और मुस्कुरा देना। देखो देखो जरा इन निगाहों को, सीख लिया है किस तरह से दिल चुरा लेना।

वैसे तो अक्सर हम खुद को बहुत संभाल कर रखते हैं, हर बात पर काबू रखते हैं, लेकिन जब तुम सामने आते हो तो ये सारी समझदारी धरी की धरी रह जाती है। सच तो ये है कि तुम्हें देखकर हम कहीं खो जाते हैं, या फिर यूं कहें कि तुम्हें देखकर इस कदर हम होश खो बैठे हैं, कि ये जो दिल है हमारा, हमारा है ही नहीं, हम तो तुम्हारे ही हो बैठे हैं।

समंदर चाहे कितना भी गहरा हो, मिल ही जाते हैं दो किनारे। समंदर चाहे कितना भी गहरा हो, मिल ही जाते हैं दो किनारे। और मिल जाते हैं वो जिन्हें मिलना होता है कभी ना कभी तकदीर के सहारे।

दोस्तों अब हो गया है वक्त चलने का क्योंकि स्टूडियो में आ चुके हैं भारती अगला कार्यक्रम लेकर हमराही अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी को मेरा नमस्कार और शुभ रात्रि

नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी स्मार्ट एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मा कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।

0: संस्कारवान आत्मनिर्भर शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सबकी जिम्मेदार। अब ऐसे जो तैयार करना है जो ज्ञान टेक्निक और कौशल से जो साथी आत्मविश्वास आत्म अनुशासन सकारात्मक सोच संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
1: निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देशभर में 40 नई महल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का, विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के, तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पूनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का, अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA ने आज से 26 सितंबर तक 7वें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यमुना पर अकादमिक विमर्श केंद्रित रहेगा। कार्यक्रम में नदियों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान, समकालीन चिंताओं और उनके सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व से जुड़ी सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव देवजीत सौकिया ने कहा है कि मौजूदा चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर का कार्यकाल 4 अक्टूबर को समाप्त होने तक बोर्ड के पास पर्याप्त समय है और इसके बाद ही इस पद को लेकर कोई फैसला किया जाएगा। अजीत अगरकर ने 18 सितंबर को BCCI को बताया था कि वे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की चयन समिति के अध्यक्ष के तौर पर अपने 3 साल के कार्यकाल को आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं है। श्री सोकिया ने मीडिया से कहा कि BCCI जब भी निर्णय लेगा उसे सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाएगा। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी नाओमिन वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमा निंगत्यास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपके दोस्त भारती और आप सबका स्वागत करती हूं। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की इस प्यारे से गीत के साथ।

रात की खामोशी में जब दिल अपने सबसे करीब होता है अपनी ही सुनता है तब कुछ रिश्तों की यादें जानने की तरह मन को

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है हमराही। आधी आधी रात सरकती जाती है, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहती हैं, लेकिन कुछ मीठी यादें हैं जो वक्त के साथ और गहरी होती जाती हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

कितने ही साल गुजर जाएं, सच्चे साथ की गर्माहट कभी पुरानी नहीं होती। कुछ रिश्ते वक्त के साथ बदलते नहीं, बल्कि हर बीतते साल के साथ और मजबूत होते जाते हैं।

जब कोई कहे साथिया तुम मेरे सपनों के मीत हो, तो लगता है जैसे रात की तन्हाई में दिल ने अपने सबसे खूबसूरत एहसास को शब्द दे दिए हों।

इन मधुर गीतों के साथ इस सुहानी रात की यादों को, मोहब्बत को और खूबसूरत एहसासों को यहीं विराम देते हैं क्योंकि समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जी हाँ, 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। आप मुझे दीजिए अनुमति छोड़ के जा रहे बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। नमस्कार। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा, भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्माकुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सबकी जिम्मेदारी। हमें ऐसे जवाब तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देश भर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा है कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का, हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्त्रबुद्धे को दिल्ली का, विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के तथा तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पूनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का, अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांधा एक्सप्रेस आज कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए ये कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित की जा चुकी है। इनकी बिक्री 35 रुपये प्रति किलो की दर से की जा रही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में आज से 26 सितंबर तक 7वें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यमुना पर अकादमिक विमर्श केंद्रित रहेगा। कार्यक्रम में नदियों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान, समकालीन चिंताओं तथा उनके सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व से जुड़ी सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मराठवाड़ा में भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में आज आंधी आ सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. India has reiterated its interests and concerns with regard to sanctioning Russia and Iran Act. External Affairs Minister S. Jaishankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of the UN General Assembly session last evening and raised concerns regarding the act. Both leaders also discussed India-U.S. bilateral relations and Gulf and Ukraine situations. U.S. President Donald Trump signed into law the Sanctioning Russia and Iran Act last week, which authorizes him to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas. In response, New Delhi said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security for the nation. Jaishankar, who arrived in New York City on Sunday, is leading the Indian delegation for the 81st session of the UN General Assembly. After meeting with Jaishankar, Rubio said both countries are building strategic partnership and coordinating on key regional priorities and upcoming multilateral efforts. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar co-chaired the L69 Consultative Ministerial Interaction on UNSC Reform along with his St. Lucian counterpart Alva Baptist. Addressing the meeting, Dr. Jaishankar noted that the Global South is at the receiving end of the unprecedented changes that the world is undergoing, with the UN falling short of expectations. He also underlined the inability of the UN Security Council to address ongoing conflicts and threats to international peace and security, only highlight the urgency of reform. New Delhi has categorically rejected the unwarranted and factually incorrect references to India in the joint communique of the so-called Organization of Islamic Cooperation, OIC, contact group on Jammu and Kashmir. In a statement, Ministry of External Affairs said the OIC has no locus standi to pronounce on matters that are strictly internal to India. It said the entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are integral and inalienable part of India, and no amount of repetition of politically motivated propaganda can change this reality. The Election Commission has said that all the decisions, including the electoral roll revision, were taken unanimously. The Commission informed that it has taken numerous decisions, introduced around 40 new initiatives, and undertaken many electoral reforms, including special intensive revision, in the recent months across the country. The Commission emphasized that difference in views and observations are a normal part of deliberation in any institution, and it is a part of the decision-making process before taking a final decision. It said every officer of the Commission is fully authorized to give his suggestions to the Commission for improving the electoral system. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has launched Bharat Taxi and the Mukhyamantri Krishak Samridhi Yojana, aimed at supporting taxi drivers and farmers. Under Bharat Taxi, two-wheeler, taxi and three-wheeler drivers can register without paying any commission. They will also get social security cover of 5 lakh rupees. Under the Mukhyamantri Krishak Samridhi Yojana, the interest rate on loans provided to farmers through the Uttar Pradesh Cooperative Gramya Vikas Bank has been reduced from 11% to 6%. Delhi government has approved the Durga scheme aimed at providing safe, clean and dignified employment opportunities to women and transgender persons in the capital. This decision was taken at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Rekha Gupta in New Delhi yesterday. Under this scheme, 1,300 pink electric autos will be allocated in the first phase of these. 1,170 will be reserved for women and 130 for transgender beneficiaries. The Ministry of Finance has informed that all public sector banks and regional rural banks will remain open on Sunday, 27 September. The Ministry said that this step has been taken in view of the proposed three-day nationwide bank strike called by the United Forum of Bank Unions from 28th to 30th of this month, coinciding with the preceding weekend holidays of 26th and 27th September. It said that the Reserve Bank of India has granted approval for all bank branches, offices, ATM link branches and currency chests to remain fully operational on Sunday. India's men's badminton team settled for the bronze medal after facing 1-3 defeat to China in the semi-final in Aichi, Japan. And that is the end of this news bulletin.

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की फिल्म डिस्को डांसर के इस गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज से सजाया है पप्पी लहरी ने और संगीतकार पप्पी लहरी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा। अभी आपने गीत सुना फिल्म जुर्म से कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में।

प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म शौकीन से किशोर कुमार की आवाज में, संगीतकार आरडी बर्मन, गीतकार योगेश।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत, फिल्म मोहम्मद रफी, क्षमा कीजिएगा, फिल्म आमने सामने से मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, गीतकार आनंद बख्शी।

अगला गीत सुनते हैं फिल्म चलती का नाम जिंदगी से मोहम्मद रफी किशोर कुमार और मना दे की आवाज में गीतकार इशात और संगीतकार किशोर कुमार

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हां, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मुलाकात होगी 5:10 पर प्रोग्राम भोर सुहानी में। छोड़ के जा रही हूं बहुत ही प्यारे गीत के साथ। गीत है फिल्म दो दिशाएं से, यशुदास की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो मैं आपसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन OIC के तथा कथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का OIC को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से ज़मीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मा कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सबकी जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देश भर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांदा एक्सप्रेस आज कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए ये कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित किया जा चुका है। इनकी बिक्री 35 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त भारती और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस गीत के साथ।

प्रकृति अपनी सुंदरता और सुगंध से वातावरण को खुशनुमा बनाती है, जिससे हमारे जीवन को आनंद और शांति मिलती है। तो इसलिए नेचर की जो सुंदरता होती है ना, उसे देखकर हम अपनी परेशानियां, अपने दुख थोड़े कम कर जाते हैं, कम हमारे कम हो भी जाते हैं। तो इसलिए नेचर का हमें थोड़ा सा ही सही पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।

आकाशवाणी इम्फाल नसे सगो से नुमित सेप्टेम्बर की तांग कुन मरे इंग लिसिंग नि कुन तरुक लांगबन की तरह हम दोई निपान बा सकाप तले सिंग मा चमापल निफु निपाल हाउसिक आयु के पुंग मंगा मखाई ताके बगलुई नना संगाई चनल की थोड़म संदुक पाउजरे संदुक चरिबा मेगास चाम अहुम दस्मिक मंगा थोड़म ताबिरिब सिंबू तराम नुक चरी खुरुम चरी